0: Welcome back. We're now getting some breaking news. This is regarding the Twisha death probe. And now we will show you the exclusive images of the husband, the accused Samarth Singh, who is now in custody. India Today traces Twisha's husband, Samarth Singh, and Samarth being brought to Bhopal. Samarth is currently kept at Katara Hills Police Station. Heavy police deployment outside the police station. Strict orders are that no outsiders are allowed inside the station. Bhopal police is on high alert over Samarth's arrest. So these are the visuals from Bhopal, where Samarth has been brought and he has been kept at the Katara Hills Police Station, and no outsiders are now allowed inside the police station. There's a strict order that no outsiders are allowed inside the station. And Samarth Singh, who had been absconding for over 10 days since the death of Twisha Sharma, is now finally in the Bhopal police custody. The Bhopal police are on high alert over Samarth's arrest. So he had been absconding. In fact, there was also a bounty of 30,000 that had been announced. And now he has finally surrendered. He surrendered in Jabalpur. And he was presented at the Jabalpur court, where the court then said that he must go to Bhopal. And now he has been brought to Bhopal. He has been kept at the Katara Hills Police Station.
1: हम इस वक्त भोपाल के कटारा हिल्स थाने में हैं, उसी थाने में जहां समर्थ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है त्विशा की मौत के मामले में। और जबलपुर में समर्थ को भोपाल पुलिस ने कल देर रात वहां से डिटेन किया, जबलपुर पुलिस से कस्टडी ली और फिर समर्थ को लेकर के रात के अंधेरे में इसी कटारा हिल्स थाने लाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं रात में उस समय की जब उसे थाने में लाया गया था। और ये तस्वीरें फिलहाल अगर आप देखें कटारा हिल्स थाने की, जहां पे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को गेट पर ही तैनात कर दिया गया है। अंदर जाने की अनुमति शायद नहीं है आज। सामने अगर जो आपको दिखाएं, अंदर लॉकअप है जहां पे फिलहाल समर्थ को रखा गया है, वो कटारा हिल्स थाना है। ये कुछ समय पहले ही ये नया थाना भोपाल में खुला था और उसके बाद ये जो मामला दर्ज हुआ है, उस देर रात आरोपी समर्थ सिंह को यहीं लाया गया है। पुलिस अब तक दावा करती आई है कि त्विशा ने आत्महत्या कर ली, और साथ ही में पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि अगर समर्थ अपने आप को निर्दोष मानता है तो फिर वो फरार क्यों हुआ और फरारी के दौरान उसने समय कहां काटा, किसने उसकी मदद की। ये तमाम जानकारियां पुलिस रिमांड में लेने के बाद समर्थ से ले सकती है। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की दिखा रहे हैं जहां देर रात समर्थ को लाया गया है और फिलहाल उसे इसी थाने में रखा गया है।
0: And my colleague Ravish Pal is in fact joining us from Bhopal. Ravish, Samarth ko ab Bhopal laya ja chuka hai, Katara Hills Police Station mein rakha gaya hai. Ab aage ki pratikriya kya rahegi?
1: देखिए, सबसे पहले हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो जगह है कटारा हिल्स थाना, इसी थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है समर्थ और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ, और यहीं पे कल देर रात समर्थ को लाया गया है। फिलहाल ये जो हम अंदर की आपको तस्वीरें यहां से दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने जो रूम आपको दिख रहा है उसी के सामने लॉकअप है, वहीं पर बताया जा रहा है कि समर्थ को कल रात को लाया गया, उसको वहीं रखा गया है। और कुछ देर पहले तक समर्थ जो है वो सो रहा था, जब हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, पता लगाया कुछ रात को उसने खाने की डिमांड की थी। तकरीबन रात को 2:30 बजे जब उसे यहाँ लेके पहुँचे थे तो उसने कुछ खाने की डिमांड की थी और उसके बाद फिर वो सो गया था, और अभी भी वो सो ही रहा है। और बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद किसी भी समय, 11 बजे के बाद किसी भी समय, इसी पुलिस थाने से पहले समर्थ को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और मेडिकल के बाद उसे जज के सामने कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं भोपाल पुलिस के, उनके मुताबिक कोशिश होगी कि कोर्ट से समर्थ की पुलिस रिमांड मांगी जाए। पुलिस रिमांड के दौरान समर्थ से काफ़ी पूछताछ करनी है पुलिस को कि त्विशा और उसके बीच में आखिर आखिरी लम्हों में क्या हुआ था, आखिरी दिन जिस दिन 12 मई को क्या ऐसा घटनाक्रम रहा कि त्विशा को एक कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही दोनों के रिश्तों के बीच में क्या खटास थी, जिस तरीके की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है उसे लेकर के कुछ सवाल समर्थ से पुलिस को करने हैं। समर्थ से ये भी पुलिस को पता करना है कि आखिरकार खुद वकील होकर के कानून उसने इस तरीके से हाथ में क्यों लिया कि वो फरार हो गया, वो यहाँ रुका क्यों नहीं, पुलिस के पास क्यों नहीं था। अगर अक्यूज था तो वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फरारी के दौरान वो कहाँ कहाँ गया, किन किन के साथ रहा, किस किस ने मदद की, ये तमाम चीज़ें पुलिस अपने रिमांड अवधि के दौरान समर्थ से जानना चाहती है। इसलिए पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी इसको सीबीआई से रेकमेंड कर चुकी है केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसलिए पुलिस चाहेगी कि सीबीआई के पास जाने से पहले कम से कम उसके जो कुछ अनसॉल्व्ड आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर उसे मिल सके। तो अभी फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट है। इसी थाने के अंदर समर्थ मौजूद है, दोपहर के बाद मेडिकल और फिर उसके बाद कोर्ट लाया जाएगा, पुलिस रिमांड मांगेगी। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यही है कि जुडिशरी का सिस्टम होने के बावजूद भी किस तरीके से समर्थ इतने दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा, क्या उसे खुद जुडिशरी पे भरोसा नहीं था कि वो इतने दिनों तक फरार रहा।
0: बिल्कुल रवेश, हमारे साथ बने रहिए, वी हैव सम मोर न्यूज कमिंग इन ऑन द स्टोरी। And meanwhile, AIIMS Delhi is ready for second autopsy in the Twisha case. AIIMS forensic head has said that they are awaiting official order. AIIMS team may fly to Bhopal for the fresh post-mortem. Madhya Pradesh High Court has ordered second autopsy in the Twisha death case. So Twisha's body has been kept at AIIMS Bhopal mortuary and Twisha's husband has already been taken into custody after days on run. We are already showing you the visuals of the police station where he's kept at. It's the Katara Hills Police Station in Bhopal. And remember, Twisha's family claims that dowry harassment led to death, but the in-laws claim that Twisha suffered from drug addiction. And the High Court has now given a nod for the second autopsy. Ravish, my colleague, continues to stay with us. Ravish, second autopsy bhi jald ho sakti hai, ye aisi jankari mil rahi hai. Kitna significant rahega ye? Aur first autopsy mein kya kuch saamne aaya tha? Aur kis wajah se second autopsy ki demand kar rahe the Twisha ke ghar wale?
1: बिल्कुल, सेकेंड ऑटोप्सी की डिमांड करने के पीछे तीन बड़े रीजन हैं। फैमिली का कहना है कि जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुई थी उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन त्विशा का जो है वो बिल्कुल अलग है, जबकि उसका जो असली फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि वो खुद एक मॉडल रही है, इसलिए उसका जो प्रोफाइल है वो पब्लिक है और वो आराम से लोग देख सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये तमाम चीजें। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जो असली फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उससे अलग जानकारी थी, जैसा परिवार ने बताया। दूसरा, फैमिली का ये भी क्लेम था कि लिगेचर जो नहीं दिया गया पोस्टमार्टम के टाइम, जो कि देना चाहिए था, किससे फंदा लगाया था त्विशा ने, वो मटेरियल जो है वो पुलिस ने समय पे उपलब्ध नहीं कराया पोस्टमार्टम के लिए, ये भी एक बड़ा लैप्स था। ये भी सामने आया जिसको बाद में पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया। इंडिया टुडे ने सबसे पहले खबर बताई थी कि लिगेचर नहीं पहुंचा है, और संडे को हमने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। तो ये एक बड़ा लैप्स था पोस्टमार्टम के लिए। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बॉडी पे इंजरीज के मार्क हैं। फैमिली क्लेम कर रहा है कि असॉल्ट हुआ उसके साथ, हालांकि पुलिस कह रही है कि जो इंजरीज हैं वो सिंपल इन नेचर है, यानी वो ब्रूटल असॉल्ट नहीं है। इसलिए पुलिस अपना क्लेम कर रही है, लेकिन फैमिली का कहना है कि इसके लिए भी पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए। तो ये तीन बड़ी मेजर रीजन है जिसकी वजह से फैमिली चाहती कि सेकेंड ऑटोप्सी हो, उसमें सभी चीजें साफ हो और मध्य प्रदेश में ना हो, क्योंकि उनका सोचना ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अब तक की जो कुछ भी उन लोगों ने सफर किया है फैमिली ने त्विशा की यहाँ आने के बाद, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जुडिशरी पे बड़ा अच्छा होल्ड है गिरीबाला सिंह का, इसके साथ ही इन्फ्लुएंसिंग लोगों के साथ भी जाहिर सी बात है जज हो रह चुकी हैं, तो संपर्क होंगे, बातचीत होगी, इसलिए वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसीलिए फैमिली चाहती है कि सेकेंड पोस्टमार्टम या तो दिल्ली में हो, लेकिन अब हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि दिल्ली एम्स की जो टीम आएगी वो भोपाल में आके पोस्टमार्टम कर सकती है, उसकी वीडियोग्राफी होगी। और इसके साथ ही एम्स डायरेक्टर का कहना है दिल्ली में कि अगर पॉसिबल हुआ तो बॉडी यहां से दिल्ली लेके जाकर के वहां पे भी पोस्टमार्टम हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन यही सारी मेन रीजंस हैं जो हमने आपको बताए जिसकी वजह से फैमिली चाहती है कि उसकी सेकंड ऑटोप्सी होनी चाहिए।
0: जी रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। विल कीप कमिंग बैक टू फॉर मोर अपडेट्स ऑन द त्विशा डेथ केस दैट वी आर क्लोजली ट्रैकिंग। सो इन द लेटेस्ट, द एम्स दिल्ली इज रेडी फॉर द सेकंड ऑटोप्सी एंड द टीम फ्रॉम दिल्ली विल बी फ्लाइंग टू भोपाल फॉर द सेकंड ऑटोप्सी व्हिच इज बीइंग डिमांडेड बाय द फैमिली ऑफ त्विशा शर्मा। With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
2: You are watching India Today. Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know

0: Viewers, we're beginning the bulletin with our focus on the case of Twisha Sharma's dowry death. Now, this is a super exclusive news break on India Today that we're bringing to you, wherein in the case, the scene of crime has now been accessed. This is where Twisha was found dead. These are the visuals of that very room in the terrace. It's a crime scene that's under scanner. It's exclusive images from the room where Twisha died, and Twisha's death mystery deepens at this given point, with the scene of crime exclusively having been accessed for more clarity into the very case, the key evidence coming into focus. Now, remember, there have been plenty of questions with regards to whether the crime scene and all the evidence that was available at the very crime scene was collected by the team that was investigating this very case since day one. There have been questions with regards to a CCTV footage that had been accessed just days after the case came to the forefront, where she was seen, her body was seen being carried downstairs through the staircase from this very room, because this is the room where she was found in a hanging state. She hung herself in this very room on the terrace. Ravish Pal joining me on the broadcast with more details. He's been tracking this case since day one. Ravish, a very good afternoon to you. Sabse pehle, ye jo room ki tasveere abhi samne aa rahi hai, ye ek exclusive visual dikha rahe hain hum apne viewers ko. Is room ke baare mein aur kya jankari mil rahi hai? Ye kis story pe hai ghar par? Aur yahan se aur kya kya evidence ke baare mein pata chala hai? Kya kya investigation ke dauran collect hua hai yahan se?
1: देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं. सबसे पहले, ये रूम नहीं है, दरअसल ये रूफ है. हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पे ये लगा हुआ है. सबसे ऊपरी फ्लोर पे अगर आप देखें, वो जो आप पैनल देख रहे हैं, उसी पैनल के नीचे की तरफ का ये हिस्सा है जो तस्वीरें इंडिया टुडे ब्रेक कर रहा है. उसी जगह पे कथित रूप से त्विशा ने फांसी लगाई थी. वो जो आप देख रहे हैं रूफ, उसी पे ये जिम्नास्ट का बेल्ट लगा हुआ है, और जो हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं, उसी से एक जो ब्लैक कलर का बेल्ट निकला हुआ है, उसी से त्विशा ने कथित रूप से फांसी लगाई थी. और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया टुडे ने जब ब्रेक की है. अभी आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई ने टेक ओवर किया नहीं है. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है सीबीआई को कि इस केस की आप इन्वेस्टिगेशन करें. आज की तारीख में करेंटली मध्य प्रदेश पुलिस ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. और अभी जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये गिरिबाला सिंह जो है उनका मकान है, और उसी मकान के सबसे टॉप फ्लोर पे ये वो रूफ का हिस्सा है, लोहे का जो शेड बना हुआ है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं विजुअल्स में. उसी से वो लगा हुआ जिम्नास्ट का बेल्ट था जिससे 12 मई की रात को त्विशा शर्मा ने फांसी लगाई है. और एविडेंस कलेक्ट के नाम पे आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल उस पूरे एरिया को सीज किया हुआ है, और वहां से पुलिस को जो कुछ चाहिए था, लिगेचर जिससे त्विशा ने फांसी लगाई, इसके साथ ही त्विशा का मोबाइल फोन और ऐसी तमाम दूसरी चीजें जो मौत के समय त्विशा के पास थी, वो पुलिस ने बतौर एविडेंस जमा कर ली है. एफएसएल जांच हो चुकी है, फिलहाल पुलिस के मालखाने में जमा है वो. और ये तमाम चीजें इसलिए भी पुलिस प्रिजर्व करके रख रही है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद सीबीआई इस केस को टेक ओवर करती है, तो सारे एविडेंस जो करंट फॉर्म में है वो पुलिस को हैंड ओवर करने होंगे सीबीआई को. इसीलिए इन तमाम चीजों पर फिलहाल पुलिस काफी ज्यादा ध्यान भी दे रही है, और पुलिस की एक टीम जो है आज वो बकायदा गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची भी थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 बार समन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है.
0: जी रवीश, अगर हम इस रूफ की बात करें, तो जब एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स, कोई ऐसा एविडेंस या साइन मिला था उन्हें कि यहाँ पे कुछ कंफ्लिक्टिंग सीन हुआ था, कि जहाँ पे मतलब दो लोगों के बीच में किसी तरह की लड़ाई कुछ आउट ऑफ प्लेस लगा था? क्योंकि हमने एक सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि त्विशा की बॉडी को उसके फैमिली मेंबर्स ही नीचे ला रहे थे स्टेयरकेस के थ्रू, तो बॉडी वहां से तो रिट्रीव नहीं की गई थी, पर ये जगह था जहां पे त्विशा की बॉडी उन फैमिली मेंबर्स को ही सबसे पहले मिली थी. तो क्या ऐसी कोई एविडेंस पाई गई है जो साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा हो?
1: देखिए, पुलिस के सोर्सेस से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऐसा कोई एविडेंस जो इस तरफ इशारा कर रहा हो कि मरने से पहले त्विशा की किसी भी तरीके का कोई असॉल्ट हुआ हो या कोई झगड़ा हुआ हो, मारपीट हुई हो, ऐसा कोई भी एविडेंस ना तो पुलिस को टेक्निकल एविडेंस मिला है ना ही किसी और तरीके का कोई एविडेंस मिला है। त्विशा की बॉडी पे यहाँ तक की जो मार्क्स हैं जिसका जिक्र एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी है वो सिंपल इन नेचर है, यानी मामूली वो खरोचे जो किसी भी शव को उतारते समय भी आ जाती है या शव को जब वो ले करके आ रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत संकरी सी वो गली है जहां से फिलहाल उस शव को जब उतारा गया था, निकाला गया था, तो उस दौरान भी त्विशा का हाथ जो है वो दीवार से या जो रेलिंग है सीढ़ियों की उससे टकराया होगा और इसकी वजह से भी वो निशान जो उसके एल्बो पे आए हैं वो तमाम चीजें आई हैं। तो पुलिस तो पूरी तरीके से श्योर है कि ये एक सुसाइड का केस है और यहां पर फिलहाल कोई भी फाउल प्ले जो है, जो सीन ऑफ क्राइम है वहां पर पुलिस को अब तक नहीं मिल पाया है।
0: जी रवीश, अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि समर्थ को कल अरेस्ट करा गया था आफ्टर वो आकर खुद सरेंडर कर दिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास जबलपुर में। अभी और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपने खुद कहा कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी शुरू नहीं हुई है। दो फैमिली पहले दिन से बोल रही है कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि इन्फ्लुएंस ना हो ये पूरे इन्वेस्टिगेशन पर किसी भी तरह का। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस मुकाम तक पहुंची है?
1: देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आपको बता दें कि बहुत ज्यादा आगे अब तक बढ़ नहीं पाई है। उसकी एक बड़ी वजह थी, दरअसल जो प्राइम अक्यूज था इस पूरे मामले में समर सिंह, वो तो कल पुलिस के पास पहुंचा है, वो कल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब तक तो पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पाई थी। पुलिस टेक्निकल एविडेंस पे ज्यादा ध्यान दे रही थी। टेक्निकल एविडेंस के लिए सर्टिफिकेट लेना होता है, SFL से सर्टिफिकेट लेना होता है, तो कोशिश यही थी कि जितने भी टेक्निकल एविडेंस है जैसे CCTV फुटेज हो, त्विशा का मोबाइल डिटेल्स हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो, या फिर अक्यूज्ड समर्थ हो, गिरिबाला सिंह हो, या त्विशा के फैमिली मेंबर्स हो, फिलहाल पुलिस का ध्यान ज्यादातर उन टेक्निकल एविडेंस पे था। दूसरा, पुलिस का सबसे बड़ा ध्यान जो था वो मध्य प्रदेश में ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को खोजने पे था जहां पर बॉडी को -80 डिग्री टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि एम्स भोपाल ये कह चुका है कि बॉडी यहाँ -4 डिग्री टेम्परेचर पर रखी हुई है, लेकिन जिस तरीके की गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ रही है, भोपाल में पड़ रही है, -4 डिग्री टेम्परेचर भी हम देखें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी को कि बॉडी को डिकम्पोज होने से बहुत ज्यादा दिनों तक रोका जा सके, और खासतौर से ऐसे समय में जब उसका सेकेंड पोस्टमार्टम होने के चांसेस हैं, क्योंकि सेकेंड पोस्टमार्टम अगर होता है तो बॉडी के टिश्यूज, सेल्स, वो सब उस स्थिति में होने चाहिए कि उससे एक सही रिपोर्ट सामने आ सके। इसलिए फिलहाल पुलिस का ध्यान इन सब चीजों पर था। अब समर्थ पुलिस के पास है, समर्थ को पुलिस जो है मेडिकल करा करके आज कोर्ट में पेश करेगी, फिर उसकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और फिर इसके बाद माना जाएगा कि कल से पुलिस की थोरो इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुलिस जो है समर्थ को लेकर के जो क्राइम सीन है वहां आएगी और पूरी घटना को एक बार फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश भी होगी।
0: जी रवीश, आप हमारे साथ बने रहिए। एंड व्यूअर्स, लेट मी जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग हियर बिफोर वी प्रोसीड विद मोर न्यूज एंड अपडेट्स दैट्स कमिंग इन टू दिस वेरी केस। देयर वाज नो सुसाइड नोट दैट वाज फाउंड। दिस इज द वेरी क्राइम सीन दैट्स नाउ अंडर स्कैनर, द रूफ where the entire scene took place, where the suicide took place, the case of suicide took place. Twisha hung herself here. But when the police came in to investigate, among other evidences that they could retrieve from this very spot, there was no suicide note, which again puts a big question mark on whether it indeed is a case of suicide or not, which we will come back to again. Ravish, aap hamare saath rahiye. Viewers, there's more breaking news that's coming in. This is with regards to the legal aspect now. What we are learning of is a team of lawyers reached Giribala Singh's residence, lawyers at Twisha's in-law's house in Bhopal. Twisha Sharma's death case that we are bringing to you reports of. The legal team, you can see, is at the scene. High drama, in fact, unfolds outside Giribala Singh's residence in Bhopal. The lawyers are now visiting Giribala Singh's house. Let's listen into what this team has to say before we proceed with more details from Ravish.
2: पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सरेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। हुई। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए,
3: मुझे आप एक बात बताइए,
2: नहीं सिर्फ इतना बताने हैं, सिर्फ
3: आप बताइए मेरी बात सुनिए,
2: कि सरेंडर किया या अरेस्ट हुई?
3: पहले एक सेकंड मैडम को दे देते हैं।
4: हां
3: मैडम,
4: आप सर का जवाब दीजिए सर,
2: सरेंडर किया या अरेस्ट?
5: हां हां सर सर सर,
6: चलिए लाइन आप बोलिए, आप बताइए। हां बोलिए
3: बोलिए, हमने हमारे लीगल एंटीसिपेटरी की हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे थे, उसके बाद हमने समर्पण कर दिया
2: जी। इससे ज्यादा आपको एक्सेप्ट कहां हुआ?
3: अभी समर्थ कहां है? व्हाट यू
2: नहीं तो हिरासत में लिया, हम समर्पण
3: समर्पण क्या होता है? अगर वो समर्पण करेगा तो पुलिस हिरासत में नहीं लेगी उसके बाद?
2: बिल्कुल
3: समर्पण, फिर और क्या
2: है?
7: देखिए जो जहाँ पे अपने ठीक है नहीं माना, अरेस्ट माना ना, पर हम तो अपने से पहुँचे ना वहाँ, हम कहीं भागते हुए नहीं पकड़ाए गए।
0: रवीश कंटिन्यूज टू बी विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। रवीश, ये जो टीम पहुंची है गिरिबला सिंह के घर पर, इनका कहना है, इनसे वही सवाल पूछा जा रहा था बार बार कि क्या समर्थ ने अपने आप को सरेंडर किया था कि अरेस्ट किया गया था, जिसपे वो यही कह रहे हैं कि सरेंडर करने के बाद कस्टडी में लेना उनको एक प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर है जो वो लोग फॉलो, जो पुलिस की टीम थी उन्होंने फॉलो किया। अभी ये अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें, मंडे को एक हियरिंग है गिरिबला सिंह के खुद के बेल पे, जो जो साइट किया गया था कि उनका एज बहुत ज्यादा है और वो खुद एक फॉर्मर जज रह चुकी है जिसकी वजह से उनको बेल दे दी गई, उसकी एक हियरिंग है। और समर्थ के लिए भी ये केस हम देखेंगे कि आगे बढ़ता जाएगा कोर्ट में। अभी और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पे, इस पूरे विषय पर?
1: देखिए जो लीगल एस्पेक्ट्स की बात हम करें तो मंडे को जो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है गिरिबाला सिंह को, उसको चैलेंज किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस एंटीसिपेटरी बेल को चैलेंज करते समय कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा शक गहरा जाते हैं त्विशा की मौत पर। खुद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह एडमिट किया है कि जो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर चल रहा है गिरिबाला सिंह के घर का, उसके साथ मोस्ट प्रोबेबली टेम्परिंग हुई है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में माना है, और इसी बिहाफ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जाए गिरिबाला सिंह की। एमपी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो गिरिबाला सिंह है वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसीलिए भी उनके एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जाए। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो एमपी गवर्नमेंट ने उस एप्लीकेशन में दी है। मंडे को हियरिंग होनी है 25 मई को, और इससे पहले जो लॉयर्स हैं वो गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंचे हुए हैं, अंदर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर भी बात हो रही है, समर्थ को लेकर के भी बात हो रही है, क्योंकि समर्थ को कोर्ट में पेश होना है आज, और जिसके बाद पुलिस उनकी रिमांड लेगी। इसलिए तमाम जो लीगल एस्पेक्ट्स है उस पर बात करने के लिए रिटायर्ड जज निर्मल गिरिबाला सिंह के घर पर फिलहाल तमाम लॉयर्स पहुंचे हुए हैं।
0: बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बने रहे। व्यूअर्स, वी हैव मोर न्यूज कमिंग इन ऑन दिस वेरी केस, लेट्स गेट यू मोर डिटेल्स ऑन दैट वेरी फ्रंट एज द तुषा केस प्रोब also intensifies in Madhya Pradesh at this point. Cops serve a high court notice to the mother-in-law Gribala. The Madhya Pradesh cops at Gribala Singh's house in Twisha case. So earlier it was a team of lawyers that reached her house. Now it's a team of police officers who've also reached the in-law's house. The high court notice has been served to Twisha's mother-in-law. The police have to say that the senior officers will share more details on that notice shortly. This is the latest that we are given to understand. Take a look at what happened. रवीश, क्या आपको इस नोटिस के बारे में अभी क्या जानकारी मिली है कि ये नोटिस में एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया गया है पुलिस द्वारा? हाई कोर्ट का नोटिस है जो कि गिरिबाला सिंह तक पहुंचाई गई है पुलिस द्वारा, आपको इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है?
1: देखिए ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जब हाई कोर्ट कोई नोटिस देता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो आईओ होते हैं, वो दोनों पार्टीज को ये नोटिस देते हैं। तो ये एक नोटिस गिरिबाला सिंह को आया है, सेकंड नोटिस जो है वो विक्टिम की फैमिली यानी त्विशा की फैमिली के जो लॉयर्स हैं उन्हें भी दिया गया है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है, इसमें उन्हें बताया गया है कि आपके लॉयर जो है वो हाईकोर्ट में मौजूद थे, हाईकोर्ट में आपको लेकर के ये एप्लीकेशन फाइल हुई है, इस पर आपको अपना पक्ष रखना। और इसके साथ ही पुलिस ये भी कहती है कि इस नोटिस के जरिए पुलिस का यहाँ पे आकर के ये भी कहना है कि जल्द से जल्द आपका जो अपना स्टेटमेंट है वो भी आपको रिकॉर्ड कराना है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको फिलहाल पुलिस और आईओ जो है वो मिल करके यहाँ पे अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। जब भी कोर्ट से कोई नोटिस आता है तो वो यहाँ पे चस्पा किया जाता है, दिया जाता है जो भी पार्टीज होती है उन दोनों को।
0: रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बल्बीवाज, वी आर गोना कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज पैनिंग आउट ऑन एवरी एस्पेक्ट, बी इट द लीगल साइड, बी इट व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से, बी इट व्हाट द प्रोब, व्हिच वे द प्रोब इज हेडेड, ऑल ऑफ इट राइट हियर ऑन इंडिया टुडे। बट यस, द केस स्टिल कंटिन्यूज टू बी प्रोब्ड इनटू एंड we continue to seek justice for Twisha Sharma and at least the answers to what exactly happened to her. On that note, we're shifting our focus to more stories coming in. Shifting focus, it is the Prime Minister pitching India as a global green energy hub. The Prime Minister bets big on green hydrogen and clean energy push. PMI's Global Green Alliances to boost the ports, UAE, Norway ties to supercharge shipbuilding, the focus being on green transition and sustainable growth. India targets new age economy with clean energy drive. Let's listen in to what the Prime Minister had to say.
5: Clean energy, critical minerals, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। आज क्लीन
0: ऑन दैट नोट, नो एंड to abusive politics. It's a massive controversy that's erupted in Uttar Pradesh over the shocking alleged remarks targeting Prime Minister Modi. Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai is under fire after a viral video surfaced alleging to abusive politics. It's a massive controversy that's erupted in Uttar Pradesh over the shocking alleged remarks targeting Prime Minister Modi. Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai is under fire after a viral video surfaced allegedly showing him using an abusive slur against the Prime Minister. BJP has launched a blistering attack with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath calling the remarks indecent, unparliamentary and the proof of what he described as the Congress Party's political depravity. But Ajay Rai is now claiming the viral clip is AI generated, insisting he made no offensive remarks against the Prime Minister and alleging that the video is fake. And amid this, the bitter face-off, the spotlight is also back on an earlier moment when on May 1st, Prime Minister Modi had publicly expressed concern over Ajay Rai's health during the election campaign. India Today's report tracks the very political firestorm over this viral video controversy.
8: मोदी की
9: आप देख रहे होगे कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है, नकारात्मक सोच है इसीलिए ये पतन की तरफ गई। राहुल गांधी जी हों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हों, ये कैसी भाषा बोलते हैं जिसको उनके परिवार वाले भी पसंद नहीं करते, दिग्विजय के परिवार को पसंद नहीं करते कि तू क्या बोल रहा है, और राहुल का परिवार भी राहुल जो बोलता है तो उसको पसंद नहीं करते हैं। अब तो भगवान ही उनका रुखाड़ा है कि उन्होंने LOP कैसे बना दिया, ऐसी बातें शोभा नहीं देती।
10: ये वही व्यक्ति है जिसकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रधानमंत्री ने प्रार्थना करी, उसकी कुशलता के लिए प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, और ये व्यक्ति की भाषा आप देखिए, इनकी निम्नता आप देखिए। क्या अजय राय जी ये स्क्रिप्ट आपको प्रियंका गांधी ने बोलने को दिया था या राहुल गांधी ने दिया था? ये स्क्रिप्ट किसने दिया आपको ऐसा बोलने को? या आप स्वयं ऐसे ही व्यक्ति हैं, आपकी भाषा इसी तरह की भाषा से आप परिवार में और अपने मित्रों से बात करते हैं? राजनीति में इससे ज्यादा अमर्यादित घटिया ओछापन कोई व्यक्ति कर नहीं सकता।
0: On this very story, there's breaking news that's now coming in. FIR has now been registered against Ajay Rai for making the derogatory remarks on the Prime Minister of the country. FIR registered against Congress State President Ajay Rai in the case of the unlimited comments on Prime Minister Narendra Modi in Mahoba District. BJP District Working Committee member Neeraj Rawat's Tahrir case in Kotwali City is what we are looking at, a case that's been filed against 30 unknown supporters, including Congress State President Ajay Rai, included in that very list, and the outgoing State Secretary Brajraj Singh. So this is the latest flashpoint, the latest development rather, that's come into this very story. There is an FIR that's been registered by the BJP Working Committee member in this very case, as we were just bringing to you details of those very remarks that's been made by Ajay Rai. And this is not the first time it's been flagged by the BJP, or for that matter by the Prime Minister as well earlier, with regards to Ajay Rai and the kind of comments that he makes, with, for which reason he's also been called, his mental state has also been flagged as a cause of concern by the Prime Minister himself earlier. But this is the latest in the abusive politics episode that we see play out between the Congress and the BJP. It's happened in the past, and now this is the latest episode in that very series. On that note, we are shifting our focus to a very crucial story now. This is with regards to the energy crisis and the consequences of it that India is now facing from the West Asia war. Today, fuel prices have been increased yet again, marking the third hike in just the period of last 2 weeks. Petrol prices have now gone up by ₹0.87 per litre, while diesel prices have increased by ₹0.91 per litre. Petrol in the national capital will now cost 99.51 rupee per litre after the 0.87 rupee increase. Diesel prices in the national capital have also gone up to 92.49 rupees per litre after a 0.91 rupee rise. Prices were first raised by ₹3 per litre on May 15th. That's when it all began. And another increase of 90 paise followed on May 19th. With the latest revision, fuel prices have risen by nearly, in total, ₹5 per litre in total over the past 2 weeks. Even CNG prices in Delhi have been hiked by ₹1 yet again. Now CNG is being sold at ₹81.09 rupee per kg in the national capital. The latest hikes come at a time when the government is facing pressure from the rising global crude oil prices that's been caused by the Iran war.
11: In less than 10 days, petrol and diesel prices have gone up by 5 rupees, and today, for the third time after that increment of 87 paisa in petrol, the petrol will cost you 99 rupees 54 paisa per litre if you are buying it in Delhi at a HP petrol pump. And for diesel, you will have to spend 92 rupees 53 paisa per litre, which means 91 paisa increment in the diesel prices as well. So 91 paisa increment in diesel prices, 87 paisa increment in the petrol prices, and the common man today is also thinking about the impact on their budget.
12: Aam aadmi ke liye kuch nahi hai sir, salary आप देखिए प्रॉपर्टी कितनी हाई हो रही है, हर चीज कितनी महंगी हो रही है, आपके पास कुछ नहीं है, इन फ्यूचर कुछ नहीं बचेगा, आपकी जनरेशन आएगी आप कितना करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे, यहाँ पे मंथली आपकी सैलरी उतनी है, आपके एक्सपेंसिव बढ़े जा रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? आप
13: यू ऑल्सो कंसर्न बिकॉज ऑफ दिस, आपको भी चिंता हो रही है?
14: अगर उन्हें टेंशन हो रही है तो ऑब्वियसली सारी टेंशन आएगी तो उनकी हाउसवाइफ पर ही, क्योंकि हम लोग अगर उनके पास लिमिटेड है तो वो हमें जितना देंगे वो भी हमारे पास लिमिटेड ही होगा, हमें उसमें ही ओवरऑल बजट पे असर पड़ेगा, बिकॉज अब कहीं पे भी जाते हैं तो पेट्रोल डीजल हम लोग को चाहिए ही चाहिए।
13: द ट्रबल इज नॉट ओनली ऑर द कंसर्न रादर आई वुड से इज नॉट ओनली फॉर दोज विद पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, एज फार एज सीएनजी इज कंसर्न देयर इज अनदर hike in CNG prices as well. The CNG prices have gone up by rupee 1 in the national capital. So now it would cost you 81 rupees 9 paisa per kg. The picture stands today that CNG prices have gone up by rupee 1 and diesel prices have gone up by 91 paisa. The petrol prices have gone up by 87 paisa per liter with video journalist Jagannath. This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.
0: On this very story now, there's breaking news and new developments coming in. The opposition targeting centre over the rising CNG prices. Of course, this is again not new, given that the opposition has been making such remarks since May 15th itself. Now the Congress slams Modi government over the CNG price hike and says, and I quote, CNG price up by at least rupees 4 in just the last 9 days. Congress calls Prime Minister Modi inflation man. Accuses Modi government of looting the public, alleges government favouring rich friends. This is what the Congress has to say, and I'm quoting the post that they've made. Now inflation man Modi has also increased the prices of the CNG. CNG has become 4 rupees per this per kg, that is, expensive in just the last 9 days. Narendra Modi is openly looting the public because he has to fill the coffers of his rich friends. It's on the same line that's been taken up by the Congress party and the other opposition parties since the very first fuel hike that was made on May 15th. Listen in to some of the reactions coming in. Quickly shifting our focus, as Marco Rubio is in India on that 4-day visit, he has now reached Delhi. This is his aircraft landing in Delhi as we speak. Remember earlier in the morning, his first stop in our country was in the city of Joy, Kolkata. U.S. Secretary Marco Rubio, the top aide of Donald Trump, reaches Delhi now. Remember, he is slated to meet the Prime Minister in just a short while's time. The U.S. envoy to India, Sergio Gore, has now come out to post a selfie from within the aircraft, the selfie with the U.S. Secretary Marco Rubio and his wife, Jeanette. Rubio, the team, all en route Delhi from Kolkata as the aircraft now finally lands at the Delhi airport. It's a jam-packed schedule that Marco Rubio, the state secretary of the United States of America, has, as he will be, he has already embarked upon this 4-day journey across different cities. Out of that, Kolkata has already been struck off that list. 3 other cities remain. Again, Delhi will be struck off that list as he lands in the national capital. He is to visit 2 other cities during this very visit of his. It's a very crucial visit, viewers, when we speak of Marco Rubio being in India, because US and India ties have been under the scanner. There has been strenuous periods in just the last 1 year, ever since Donald Trump took back his post of presidentship for another term in the United States. And what we look at is a selfie now being posted by the US ambassador to India, Sergio Gore, as they land in Delhi from within the aircraft itself. It's Marco Rubio along with his wife and his team. We will be seeing Marco Rubio meeting the Prime Minister in a short while. And as we were speaking of this strenuous period, yes, US and India still continue to be very crucial strategic partners. And this visit of Marco Rubio, the first ever since he stepped into the office of State Secretary of the United States after Donald Trump, took presidency for the second term in the United States comes in to be very crucial because it underlines that very important strategic partnership that the two countries share. In fact, earlier, Marco Rubio himself came out to call India a very important ally just before he embarked upon this very journey. Sergio Gore, while they were in Kolkata, remember they visited the missionaries of charity, Mother Teresa's home in Kolkata itself. Important visits, of course, which also was quite symbolic, where Sergio Gore spelled it out that this shows the spirit of service goes beyond diplomacy. The two countries and the bond they share is based on humanity and shared value, and it goes beyond borders. It transcends borders and goes beyond diplomacy. And this is where it all stands when we speak of the two countries and the relationship that they share. So, yes, it's a crucial visit marked with several important meetings, of course, that Marco Rubio shall be undertaking. And the topmost on that list would be his meeting with the Prime Minister itself, the Prime Minister himself. These are the visuals from Kolkata. On the other side of the screen, you see him landing, his aircraft landing at the Delhi airport. We're keeping a very close track as he proceeds in his journey in India. And on that very note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the top stories and the latest updates through the day. Thank you for watching.
15: Are watching India Today.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
17: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
18: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
19: How they looked after game one.
20: I mean, they were frustrated.
18: The Daily.
21: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
18: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
22: Character, the taste of success.
23: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
24: When Tamil Nadu made its voice heard, we were there.
25: The AIADMK MLA.
26: Vijay is much more comfortable.
24: From the ground to your screen, every moment captured, every voice represented.
27: Vijay might hold a meeting.
28: Joseph Vijay all set to arrive here.
29: All eyes will be now on Vijay's performance as CM. Can he be from superstar to super CM?
24: With Akshita driving unmatched engagement, together the Tamil Nadu Bureau set the benchmark for election coverage. India Today, Tamil Nadu Bureau, on the ground, leading the agenda.

0: Away, anger is spilling on the streets as locals demand swift justice. Shocking news coming in of a 10-year-old boy who had gone missing since the 21st of May, and 2 days later that he's found dead. Let me cut across to my colleague Anagha, joining us live with further details of what the investigation team has found out so far.
1: In fact, Purisha, what we're learning is that two accused, Karthik and Mohan Raj, have been apprehended by the Tamil Nadu police. The chief minister has also tweeted on this matter, saying that this has brought him immense shock and pain. In fact, the leaders of opposition, Udayan Stalin and Edappadi Palaniswamy, have also tweeted on this matter, raising questions about the law and order in the state. What we're hearing is that the child, when she was playing at a place very close to her residence, she was abducted by the two accused and then subsequently raped and then murdered is what we are hearing. The two accused have been apprehended, but a lot of questions are being raised about the law and order, given the fact that it's been less than 2 weeks, Resha, since the new government took office, and we have a report of a child being raped and then murdered. Subsequently, even the National Commission for Women has taken cognizance of this matter.
0: Oh, yes, absolutely. Anagha, I request you to stay on with us. More breaking news coming in. In fact, in connection with this particular case, where Chief Minister Vijay has expressed grief over the 10-year-old's death, condemning Coimbatore child killing, which has come in as an utter shock. Vijay has said that the incident is horrific, inhuman and unforgivable. Chief Minister Vijay, who has ordered a speedy probe and an early charge sheet to be filed. Two accused who have been arrested in Coimbatore girl murder case, where Chief Minister Vijay has assured tightest punishment for the accused. Chief Minister Vijay has directed the police to fast-track the investigation, vowing strict action in crimes against children. Coimbatore child murder case that has sparked statewide shock, and Chief Minister Vijay, who said that justice will be ensured for the victim. BJP targeting the Tamil Nadu government over women and child safety, where BJP has said that the law and order situation remains unchanged even after the change in government. BJP has urged Chief Minister Vijay to act on public safety. Let me take this back to Anagha, who continues to stay with us on the phone line. Anagha, especially the fact that Vijay has made this promise to the people of Tamil Nadu when it comes to such cases, and how he's also kept the Women and Child's Ministry with him only to ensure that it is a safer state for women and children. This time around, Vijay is saying that justice will certainly be met in this particular case. How has that helped in fast-tracking the investigation?
1: In fact, you are right in pointing that out, Suresha. The Chief Minister has held within the portfolio of Women and Child Welfare. And the reason that Chief Minister has attributed is that the safety of women and children will be the topmost priority of CVK government, is what he has promised. And therefore, he has decided to keep this portfolio to himself. He has also formed a special task force known as the Singapenne Task Force, to in every district to ensure the safety of women and children. But it brings deep anguish to the state, and that's what the Chief Minister said, that the death and murder of this 10-year-old girl has brought immense shock.
0: Anagha, I'm sorry I'm having to interrupt you here, but we are cutting across to more breaking news coming in the Twisha death case. Probe has intensified. The latest that is just coming in, accused Summer, the husband of Twisha, who's now being taken for his medical examination. In fact, shortly from now, as soon as the medical examination is over, Samarth will be taken straight to the court. Samarth, who after much delay and after being on the run for about 10 days, finally decided to surrender yesterday. Remember, he was fighting tooth and nail to get an anticipatory bail. First in the lower court, that was rejected, and then in the high court when the plea was filed, but he pulled it back to say that he will surrender, which he did, and now he's being taken for medical examination, and shortly from now will be taken to court. Those are the pictures on your screen. Samarth, Twisha's husband, the accused in this case, a criminal lawyer himself who is in the dock, had been on the run for the last 10 days, surrendered to the police yesterday. And now in the very latest, those are the pictures on your screens of how he's being taken for the medical examination. Shortly after that, he will be produced in court, where, remember, the police is seeking his custody. Let me take this to my colleague Ravish Pal Singh, joining us on the broadcast. Ravish, hamein latest jankari dijiye. Samarth ko medical examination ke liye leke jaya ja raha hai, uske baad court mein produce kiya jayega. Kya expected hai?
2: देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए समर्थ को जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है. भोपाल का सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका मेडिकल हो रहा है और कुछ ही देर बाद समर्थ जो है भोपाल कोर्ट पहुँचने वाला है. आप देख सकते हैं सामने पुलिस आपको दिख जाएगी, बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है देखने के लिए कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे बाद में विवाद हो. इसलिए पुलिस यहाँ पे हर गेट पे तैनात है. किसी भी गेट से ले जाया जा सकता है समर्थ को, एक नंबर गेट से लेकर 5 नंबर गेट तक है और सबको इंतजार है समर्थ का. एक बार वो यहाँ आ जाए, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनसे हमने आज जब सुबह बात की थी और दोपहर में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी हमसे बात करते हुए ये साफ कहा है कि पुलिस जो है वो आज कोर्ट से समर्थ की पुलिस रिमांड मांगेगी, कस्टडी मांगेगी, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो सामने खड़े हुए हैं. उन सभी सवालों का जवाब पुलिस को चाहिए और सीन भी रिक्रिएट करना है, जो रिक्रिएशन पूरा करना है जो क्राइम सीन है उसका, और साथ ही में समर्थ से सवाल भी पूछने हैं उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर के त्रिशा के साथ उसके संबंध कैसे थे, शादी के इतने खड़े हुए हैं. उन सभी सवालों का जवाब पुलिस को चाहिए और सीन भी रिक्रिएट करना है, जो रिक्रिएशन पूरा करना है जो क्राइम सीन है उसका, और साथ ही में समर्थ से सवाल भी पूछने हैं उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर के त्रिशा के साथ उसके संबंध कैसे थे, शादी के इतने कम दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया एक पत्नी को, साथ ही में फरार क्यों हुए, किसकी मदद से हुए, फरारी के दौरान कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रहे, किसके साथ मिले, किस किस ने मदद की, और सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश जो है पुलिस को करनी है. इसलिए पुलिस आज कम से कम 7 दिनों की रिमांड मांगने की तैयारी में है कोर्ट से. देखना है कि कोर्ट पुलिस की डायरी पढ़ने के बाद आज क्या फैसला सुनाता है, कितने दिन की रिमांड आज पुलिस ले पाती है समर्थ की. लेकिन रिमांड मिलेगी पुलिस की ये लगभग तय है, क्योंकि फरार होने के चलते समर्थ कई सवालों से दूर भागा है. इसलिए उन सही सवालों के जवाब के लिए और कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस रिमांड जरूरी है और लगता है कि कोर्ट भी पुलिस की इस मांग को मान जाएगा. बस देखना यह है कि 3 दिनों की रिमांड देता है कोर्ट या 7 दिनों की रिमांड देता है. सबको इंतजार है, फिलहाल मेडिकल चल रहा है, मेडिकल के बाद इसी कोर्ट में समर्थ को पेश होना है.
0: और रवि, साथ ही में फोकस इस बात पर भी है कि गिरी बाला सिंह ने किसको वो कॉल्स किए त्रिशा के डेथ के बाद. गिरीबाला सिंह के भी सभी डिटेल्स अभी फोकस में है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन पर भी उतना ही है जितना समर्थ पर है. समर्थ ऑफ कोर्स बीइंग द हस्बैंड, बीइंग द मेन अक्यूज्ड इन दिस केस, उनको क्वेश्चन किया जाएगा अगर एक बार उनकी कस्टडी मिल जाएगी तो. कितनी देर में कोर्ट की हियरिंग शुरू होगी? ऑफ कोर्स लाइक यू सेइंग कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, बट क्या रुख अब ले रही है ये इन्वेस्टिगेशन?
2: देखिए, हियरिंग कब शुरू होगी वो तो तभी शुरू होगी जब समर्थ को यहाँ लाया जाएगा. फिलहाल तो मेडिकल चल रहा है उसका, वहाँ यहाँ तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिविल हॉस्पिटल में और कोर्ट में. तो जब कोर्ट आ जाएगा समर्थ, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि हियरिंग कब शुरू होती है. लेकिन हियरिंग जब भी शुरू हो, इतना तय है कि समर्थ को आज पुलिस रिमांड में जाना ही पड़ेगा. कितने दिनों की पुलिस रिमांड होगी ये होगा देखना होगा. क्वेश्चनिंग होगी समर्थ की होगी, हो सकता है उनकी जो माँ है गिरीबाला सिंह, जो कि त्रिशा की सास हैं, उनको भी पुलिस 2-3 बार समन दे चुकी है क्वेश्चनिंग के लिए. अभी तक वो आई नहीं है पुलिस के सामने, तो हो सकता है दोनों को आमने सामने बैठा करके भी कुछ पूछताछ की जाए या दोनों से अलग अलग पूछताछ करके बाद में फैक्ट्स को देखा जाए, चेक किया जाए, मैच किया जाए उनके स्टेटमेंट्स. तमाम इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स हैं जिस पर पुलिस को काम करना, पुलिस को ये सब जल्दी करना है. ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई रिकमेंडेशन की है त्रिशा केस की जांच के लिए. ऐसे में अगर सीबीआई टेक ओवर कर लेगी तो फिर पुलिस के पास बहुत कुछ बच नहीं जाएगा. इसलिए पुलिस के सामने समय बहुत कम है और कोशिश यही है पुलिस की कि आज रिमांड मिल जाए तो तुरंत तुरंत अपनी बची हुई जांच को पुलिस पूरा करे और कई अनसुलझे जो सवाल है उनका जवाब पुलिस हासिल करे.
0: रवीश, रिक्वेस्ट करूंगी बने रहिए हमारे साथ. वी ऑल्सो हैव द लेटेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश टॉप कॉप. लेट्स लिसन इन टू व्हाट ही सेड.
3: जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने, कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया. इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया. तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है, प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। हमने इसलिए एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन का लगाया था, बाकी हमारी कोशिश है उनसे भी जल्दी से जल्दी पूछताछ करनी।
0: रवीश, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी, क्योंकि अब भी समर्थ को थोड़ी ही देर में कोर्ट लेकर जाएंगे, वहां पर उसकी कस्टडी मांगेगी मध्य प्रदेश पुलिस पर। साथ ही में जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये केस सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा?
2: देखिए, सीबीआई को जब केस मिल जाएगा, अगर सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी, तो सीबीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस केस की परतों को खोलना, ये बिल्कुल साफ है। हालांकि सीबीआई अपनी जांच में ये जरूर एंगल बता सकती है कि पुलिस की जांच में कई सारे लैप्सेस थे, क्योंकि शुरुआत से फैमिली तो एलिगेशंस लगा ही रही थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, पोस्टमार्टम को लेकर के, लेकिन बाद में खुद पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि कई कुछ लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे मेजर था लिगेचर का समय पर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भोपाल ना पहुंचना। लिगेचर बाद में पहुंचा, उसकी रिपोर्ट बाद में आई, मैच किया गया, वो भले ही पॉजिटिव रही हो, लेकिन ये एक तरीके का एक सीरियस लैप्स था कि पोस्टमार्टम के समय लिगेचर नहीं पहुंचा एम्स भोपाल में, और इसको भी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट में रखेगी सीबीआई, और हो सकता है कि जो भी आईओ हो उन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से लिया जा सकता है।
0: और साथ ही में रवीश, जिस तरह से अब फोकस इस बात पर भी रहेगा कि गिरिबाला सिंह ने किसको कॉल किया ट्विशा के डेथ के बाद, वो 46 कॉल्स का जो रिकॉर्ड है, और क्या किसी भी तरह से केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई समर्थ या उनकी मदर के द्वारा, और अब जब इस सब बातों को देखा जाएगा, क्या इस पर भी अब पुलिस का फोकस है?
2: बिल्कुल, पुलिस का फोकस तो है ही। पुलिस इसलिए बार बार क्वेश्चनिंग के बुला भी रही है गिरिबाला सिंह को कि आपके कॉल्स हैं, 46 कॉल्स हैं, किन किन लोगों को किए गए हैं, वो तमाम चीज़ें पुलिस जो है पूछेगी, और गिरिबाला सिंह से क्वेश्चनिंग होगी। सीबीआई को पास जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसके भी इन्वेस्टिगेशन में इसको बहुत प्राथमिकता से लिया जाएगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट होता है किसी भी, आजकल टेक्निकल एविडेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मान्य माने जाते हैं कोर्ट में भी, और कोर्ट भी अप्रूव करता है कई सारे टेक्निकल एविडेंसेस को। तो आज की तारीख में फ़ोन रिकॉर्ड्स हों, सीसीटीवी फुटेज हों, व्हाट्सएप चैट्स हों, इंस्टाग्राम चैट्स हों, इन तमाम टेक्निकल एविडेंसेस को कोर्ट जो है वो एक एविडेंस के तौर पर मानता है, और इसी चैट्स और ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं उसे भी एक एक करके पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी, ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि चैट कंटिन्यूटी में है, सीसीटीवी फुटेज कंटिन्यूटी में है या नहीं, अगर फोन कॉल्स गए हैं तो क्या वाकई में जो एलिगेशन ट्विशा की फैमिली की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को फोन कॉल्स गए हैं, क्या ये सही में हुआ या नहीं, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा जिस पर पुलिस भी काम करेगी, और वंस सीबीआई जब टेक ओवर करेगी तो उस पर सीबीआई भी काम करेगी।
0: पर साथ ही में रवीश, जहां तक गिरिबाला सिंह की बात है, 3 नोटिसेज उनको सर्व किए जा चुके हैं भोपाल पुलिस ने जैसा बताया है, इनफैक्ट कल फाइनल नोटिस सर्व किया गया है उनको कि उनको क्वेश्चनिंग के लिए और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, खासकर इस मामले में कि किस तरह से उन्होंने वो कॉल्स की और क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था। पर उनकी एंटिसिपेटरी बेल या फिर अभी तक जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में दिए हैं, जिस पर बहुत आउटरेज उठा है सोशल मीडिया पर भी कि किस तरह से ट्विशा की तरफ बर्ताव था या क्या वो बोलती थी, तो उस डायरेक्शन में और क्या जानकारी मिल रही है पुलिस से?
2: देखिए, पुलिस अब इस पे बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है इन तमाम चीज़ों पे, क्योंकि पुलिस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए तो छीछा लेदर हो चुकी है, काफ़ी भद पिट चुकी है पुलिस की, तो भोपाल पुलिस के इस पूरे मामले में, इसलिए ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस किस एंगल पे और इन चीज़ों को लेकर के जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सवाल उठ रहे हैं त्रिशा की फैमिली की तरफ से, जो सवाल उठाए गए हैं उस पर बात होगी, और जो त्रिशा के लॉयर हैं उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी बात होगी, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे मेजर पॉइंट तो यही उठाया है, खुद मध्य प्रदेश सरकार ने भी उठाया है, जो एंटीसिपेटरी बेल को रद्द करने की मांग है और 25 तारीख को जिस पर सुनवाई भी होनी है हाईकोर्ट में जबलपुर की, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी कहना है कि बेल पे बाहर होने के दौरान जिस तरीके से मीडिया से इंटरेक्ट किया है गिरिबाला सिंह ने और उनकी बहू के कैरेक्टर को लेकर के उसके नेचर को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं ऐसे समय पे जब वो मर चुकी है दुनिया में नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें जो है पुलिस की जाँच में तो आएगा ही और मोरली भी जो है एक तरीके से ये गलत है, एथिकली गलत है एक मर चुके इंसान के बारे में तमाम बातें करना। तो ये सवाल पूछे जाएंगे गिरिबाला सिंह से कि क्या वजह रही, और सिर्फ यही नहीं कि सवाल पूछे जाएंगे या बात होगी, सभी कड़ियों को भी जोड़ा जाएगा, टेक्निकल एविडेंस को जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप चैट्स हों, फोन कॉल्स हों, सीसीटीवी फुटेज हो, बाकी लोगों से बात होगी, उन सभी को जोड़ करके ही एक निष्कर्ष तक जो है पुलिस या सीबीआई भविष्य में पहुंचेगी।
0: जी रवि, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सो दैट्स द लेटेस्ट कमिंग इन फ्रॉम Ravish, getting us details on Samarth, the accused in this case, husband of Twisha, who will be produced in court shortly. Possibly a chance that the police will either demand 3 days in custody or 7 days in custody for Samarth Singh, who has finally surrendered. Remember, he was hoping for an anticipatory bail, which was rejected by the lower court. And then when he filed that plea in the high court, his lawyers had done that. But he pulled back and he decided to surrender. His medical examination that is underway and shortly from now, as that will get concluded, he will be produced in the court. This, as we also understand, that the Madhya Pradesh government has requested for a CBI probe. And if that happens, the case will be handed over from the state police to the CBI. So far, details in the public domain and what the police is focusing on. The 46 calls that Gilbala Singh made, remember, she has been sent 3 notices by the Madhya Pradesh police where she has been asked to record her statement. And the final notice that has been sent, however, she denied, saying that she had not received any notice. But she is also to record her statement, this aside of the sort of statements that she has made in the media so far. And Samarth Singh, who had been on the run for 10 days, finally surrendered yesterday. And now, as per protocol, as per procedure, the medical examination that is being conducted, and then he will be produced in the Madhya Pradesh High Court. Remember, the Madhya Pradesh High Court also gave a clear go-ahead to the second post-mortem to be conducted for Twisha, which will be done at AIIMS Delhi. And that is the status of the investigation at this point. In another major development in the Twisha death case, India Today has recovered the exclusive image of the crime scene. This is the location on the terrace of the house where Twisha was found hanging. According to reports, the rooftop is the spot where the 33-year-old was allegedly found hanging on the 12th of May, triggering a high-profile investigation that has since snowballed into an alleged dowry death case. India Today accesses an exclusive image of Twisha's husband, Samarth, in police custody. The accused has been brought to Bhopal by the police. Samarth Singh had resurfaced dramatically at a court in Jabalpur on Friday, attempting to surrender there. But the court told him he would have to surrender before the Bhopal court instead, where the case is being heard. His legal practice has now also been suspended. Twisha's father has accused Samarth and his family of trying to manipulate the legal process. Navnidhi Sharma said that Samarth did... What he did was against the law, alleging that influence was used in the court, and accused the family of mocking the law while trying to avoid police custody.
3: जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने, कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है। प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। हमने इसलिए एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन का लगाया था, बाकी हमारी कोशिश है उनसे भी जल्दी से जल्दी पूछताछ करें।
4: ऐसे SIT जहाँ भी है यहाँ पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है।
5: SIT जहाँ भी है यहाँ पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है। हाई कोर्ट का नोटिस है,
6: हाई कोर्ट का नोटिस है गिरीवाला को, गिरीवाला को, गिरीवाला की गिरफ्तारी
7: पुलिस ने गिरफ्तार किया है, टेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, हुई। अब मुझे सिर्फ इतना बता,
8: मुझे आप एक बात बताइए,
7: नहीं सिर्फ इतना बताने है, सिर्फ
8: आप बता दीजिए मेरी बात
7: कि सरेंडर किया या अरेस्ट,
8: पहले एक सेकंड मैडम को दे देते हैं,
7: मैडम
6: आप सर का जवाब दीजिए सर,
7: सरेंडर किया या
8: सर, सर सर सर सर बताइए, हमने हमारी लीगल एंटीसिपेटरी की हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे थे, उसके बाद हमने समर्पण कर दिया, इससे ज्यादा आपको
7: एक्सेप्ट कहाँ हुआ,
8: अभी समर्थ कहाँ है, व्हाट यू
7: नहीं तो हिरासत में लिया, हम समर्पण
8: समर्पण क्या होता है, अगर वो समर्पण करेगा तो पुलिस हिरासत में नहीं लेगी उसके बाद,
7: बिल्कुल
8: समर्पण लेकिन और क्या है,
9: यह देखिए जो जहाँ पे, जो जहाँ पे अपने ठीक है नहीं माना, अरेस्ट माना ना, पर हम तो अपने से पहुँचे ना वहाँ, आप हम कहीं भागते हुए नहीं पकड़ाए गए।
0: Moving on to more breaking news coming in, Keralam Chief Minister V.D. Sathisan met with the Gandhis. V.D. Sathisan met Rahul Gandhi and Sonia Gandhi in New Delhi. V.D. Sathisan, who called on Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, saying that he is grateful for the guidance from the Gandhis as he is taking over and governing the state of Keralam. Keralam Chief Minister V.D. Sathisan, in his journey of now governing the state of Kerala as Chief Minister, thanked the Gandhis for their guidance. In fact, he met with Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, who he called. And then he met with them in Delhi, saying that I'm grateful for your guidance. That's the picture that has emerged of that meeting that happened in Delhi. V.D. Sathisan meeting Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. Moving on to more breaking news coming in, the centre has justified back-to-back fuel price hike. Government sources saying that India fuel price hike is just 5%. OMCs held fuel rates for 76 days is what we are learning from sources who say that the three hikes have happened, yes, but it is under 5 rupees a litre increase. Government sources also saying that global fuel prices have jumped from 20% to 90% across countries. But in India, it is still a very controlled increase. While three hikes have happened in a very short period of time, but largely that hike has remained in under 5 rupees. Telangana, Kerala, that have seen the costliest hike in petrol, and the centre has blamed the state for imposing the highest VAT despite the increasing outrage. Government sources saying that the centre has taken the major hit and still cushioning the country by and large, where the 30,000 crore hit has been borne by the centre and not by the people. While, yes, some of the load has transferred on people, but that is very marginal is what the government is saying. It is under 5 rupees collectively in the three hikes that the prices have increased. BJP has targeted Congress-ruled states in particular because they're saying that it is in the Congress-ruled states that the hike is reflecting the most, and that is because the state is imposing the highest VAT. BJP has said that UPA has issued 1.34 rupees per litre, or so I beg your pardon, 1.34 lakh crore rupees as oil bonds, saying that the Modi government repaid 1.3 lakh crore rupees. However, India has managed to keep the fuel price under check. OMCs have lost 1,000 crores daily, 1,000 crore rupees daily, and the losses have dropped after the May price hike, where Pakistan has increased the fuel by 54.9%. India has only done that by 5%, and the centre has claimed that The government is very clear that it is consumer first policy. Let me take this to my colleague Himanshu joining us on the broadcast. Himanshu, largely jo hum apne sources se jankari hame mil rahi hai ki India mein jo price hike ka pressure hai wo sabse kam hai, 5% hai, aur agar 3 times petrol hike hua bhi hai itne kam samay mein to wo 5 rupees se kam per liter hai.
10: देखिए बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है. जिस तरीके का वेस्ट एशिया के बाद जो क्राइसिस जो है वो ग्लोबली एक तरीके से सभी देशों के सामने है और उसमें भारत ने जो है वो अभी तक 3 times पेट्रोल और डीजल के प्राइस को जो है वो बढ़ा है, पेट्रोलियम कंपनी ने बढ़ाया है, जो 4.74 रुपए से 4.82 रुपए तक की है प्रति लीटर बढ़ाया गया. जबकि बाकी अगर इसको तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक हुए हैं वो 20% से 90% तक हुआ है और इसमें भारत ने जो है लगभग 5% के करीब ही है जो बढ़ाया है. जहां अगर देखा जाए जो बीजेपी रूल स्टेट्स और बाकी रूल स्टेट्स में है तो वहां तेलंगाना में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, सबसे सस्ते जहाँ पे मिलते हैं वो गुजरात और यूपी, हरियाणा, गोवा, आसाम में है. और उसके साथ साथ एक चीज और है कि अगर आप देखें तो सरकार ने इस कटौती के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो है पहले एक 27 मार्च को जो है वो सेस में कम करके पेट्रोलियम कंपनियों को राहत दिया था क्योंकि पर डे पेट्रोलियम कंपनीज को जो लॉस है वो 1,000 करोड़ का था. तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को जानती थी लेकिन अब जिस तरीके से ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मोस से जो है वो पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई चेन है उस पर असर आया है और इसी को देखते हुए भारत जो है लगातार इस कोशिश में है कि जो लॉसेस है उसको कम किया जाए और कम से कम जो है वो आम कंज्यूमर के ऊपर जो है वो नुकसान हो. भारत को रोज प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल से जो है 1,000 करोड़ का नुकसान है लेकिन अभी भारत में के अंदर जो पेट्रोलियम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाए हैं उससे अभी भी 750 करोड़ का पर डे लॉस है. तो कहीं ना कहीं भारत को ये चिंता जरूर है लेकिन कहीं और ये भी एक सत्य है कि दुनिया के अंदर यानी वर्ल्ड वाइड जो है अगर आप इंटरनेशनल तुलना में देखें तो पाकिस्तान में लगभग 55%, अमेरिका ने 45% और यूके के अंदर जो है वो 19% जो है पेट्रोल के दाम जो है बढ़े हैं. तो सरकार की कोशिश है कि कम से कम जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाए लेकिन एक तरह से ये भी एक सरकार की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था. तेलंगाना और वडोदरा में उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग हो. आपको अगर लगता है कि आपको जाना है कहीं तो आप गाड़ी का उपयोग मत कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कीजिए, ईवी व्हीकल्स का कीजिए.
0: और जी Himanshu, they are getting us the latest details on the government's position as far as the fuel price hike in India is concerned. We have to slip into a very short commercial break right now. We'll be back on the other side with more programming and of course the latest updates on all the top stories you're watching here on India Today. Do stay tuned.
11: You are watching India Today.
12: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
14: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: So sorry.
4: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन न शादी में कंगन का मेंशन सुनिए अब ना त्योहार पर हार का टेंशन न शादी में कंगन का मेंशन पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस
5: इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल हो गया है मुश्किल
4: थैंक यू मोदी जी
6: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: Sorry.
1: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
2: सुनो सुनो सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल। बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
3: थैंक यू मोदी जी।
4: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए।

0: India Today led every big story.
1: Three passengers are dead.
0: From the Hunter virus outbreak.
2: Pakistan-backed elements.
0: To breaking developments from Punjab.
2: Twin blasts in Punjab.
0: To exclusive global conversations.
3: Things are getting tough, Professor Marandi.
0: To the biggest political stories from Bengal.
4: The man from Medinipur, Shubhendu Adhikari, he will be the next chief minister.
0: And reports from the power corridors of Tamil Nadu.
5: Confident, you could see how he was entering inside the Lok Bhavan.
0: To every major breaking development.
6: And he is stark dead.
0: When India wants breaking news first, India chooses India Today.
7: So sorry.
8: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, ना शादी में कंगन का मेंशन। अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, ना शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
9: सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल। बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
8: थैंक यू मोदी जी।
10: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Future of domestic work in India lies at the intersection of dignity, regulation and respect.
3: महीने का 10,000 सुपर आज तक अपने लाइफ में नहीं कमाया.
4: जैसे हम मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं हमें मिलता है.
2: Workers are redefining their place, driven by app-based services and on-ground support from platforms.
3: Online जाने का सोचा कभी तुमने?
5: ऑनलाइन में क्या है, मतलब जाओगे तो सब ही काम करने पड़ेगा.
6: पहले काम करते थे जहाँ पे, वहाँ पर हमें उतनी इज्जत नहीं मिलती थी.
2: The question is not whether change is happening, but whether it will be enough.
7: So sorry.
8: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन. सुनिए, अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन. पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस.
9: सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल. बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल.
8: थैंक यू मोदी जी.
10: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: and for diesel you will have to spend 92.53 rupees per liter, which means 91 paisa increment in the diesel prices as well.
1: The fuel shock began on the 15th of May with a 3 rupee hike. Just 4 days later, another 90 paise increase followed. And now with the latest revision, fuel prices have surged by nearly 5 rupees per litre in the last 2 weeks. And it's not just petrol and diesel. CNG prices in Delhi have also been hiked by rupees 1 per kg, taking the price to 81.09.
0: The CNG prices have gone up by rupee 1 in the national capital, so now it would cost you 81.09 rupees per kg.
1: Cab drivers are upset. Their costs are rising, but fares remain frozen. For many, survival itself is becoming difficult.
2: हमारे टैक्सी के रेट तो वही हैं जी, पर जो पैसेंजर है हमारे को उसी हिसाब से रेट देता है जो पुराना रेट है, और जैसे अब पेट्रोल और डीजल सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम तो कुछ खाने पीने योग्य नहीं रहे जी, हमारे तो घरों में रोटी नहीं बनेगी हिसाब से.
1: While some citizens backed the hike, citing the West Asia war and global crude pressure.
3: West Asia जो है उसके अंदर जो लड़ाई चली हुई है उसके कारण ये दाम बढ़ेंगे, और मेरे को जहां तक अंदाजा है ये 12 से 14 रुपए तक के ये जो है ना अप जाएंगे, उसके बाद ब्रेक इवन आएगा तभी जो है कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इसी कारण दाम बढ़ाना काफी जरूरी भी है.
1: Many others felt that the government had to do more over rising inflation and shrinking household budgets.
4: 15 दिन के अंदर 3 बार पैसे बढ़ाने ये कोई सही बात थोड़ी है, और सरकार को इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली जिएगी कैसे, समझ ही नहीं आ रहा.
1: The reason behind the hikes, a global oil supply crunch, a war in West Asia, energy vessels struck near the Strait of Hormuz, rising refinery costs and currency fluctuations making imports more expensive. The opposition continues to target Prime Minister Modi, calling him the inflation man, accusing the government of looting the public.
5: Where is Mr. Modi? Why is he not speaking about it? For every little thing, he has a comment to make. When it comes to important subjects like economy, he keeps quiet. When it comes to price rise, he keeps quiet. He does pariksha pa charcha but doesn't talk about NEET paper leak.
6: नौकरियां हैं नहीं, जिनकी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं. ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, मगर सरकार मेलोडी बांट रही है.
1: But government sources have hit back, claiming that India shielded consumers for 76 days despite soaring global crude prices and massive supply disruptions.
7: अर्थव्यवस्था के गिरते हुए दौर से परेशानी में है, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को संभालने की सफल कोशिशें की हैं.
1: The government blames global factors, the opposition blames policy failure. But caught in the middle is the Aam Aadmi. Fuel is getting costlier and so is everyday life. How much more can the common man absorb before the pressure becomes unbearable? With Amit Bhadwaj in Delhi, Bureau Report, India Today.
8: A horrific crime in Tamil Nadu has triggered massive outrage and fresh questions over women and child safety in the state. A 10-year-old girl who went missing while playing near her home in Coimbatore Sulur area was later found assaulted and murdered near Kannampalayam. Police has arrested two suspects in connection with this case, the brutal incident that sparked protests, with angry locals demanding immediate justice and strict punishment for the accused. The National Commission for Women has also taken suo motu cognizance of the case. Chief Minister Vijay has condemned the killing, calling it inhuman and unforgivable, and has promised a swift investigation and strict action. But the opposition has launched a sharp attack on the Vijay government. AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy alleged administrative failure and negligence over law and order in Tamil Nadu.
9: பாப்பாவை காணாங்க, தர்சினி யார் தர்சினி பாப்பாவை காணாங்க,
10: பயமெல்லாம்
9: நாங்களும் வந்து போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம், போலீஸ் காவல்துறையும் வந்து பொழுது நீங்க தேடினாங்க, ரெண்டு நாளை தேடினாங்க, இப்பதான் எஃப்ஐஆர் போட்டு எஃப்ஐஆர்ல கையெழுத்து வாங்கி உண்மை சொல்றாங்க, இப்படி குழந்தை காலமாயிருச்சு அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குற்றவாளி காட்டுங்கன்னா காட்ட மாட்டோம், அது நாங்கள் கொண்டு போகிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிருவோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு தீவிரமா தீர்ப்பு எடுக்கணும்.

0: डिफिकल्ट।
1: हमारे टैक्सी के रेट तो वही हैं जी, पर जो पैसेंजर है हमारे को उसी हिसाब से रेट देता है जो पुराना रेट है। और जैसे अब पेट्रोल और डीजल सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम तो कुछ खाने पीने योग्य नहीं रहे जी, हमारे तो घरों में रोटी नहीं बनेगी हिसाब से।
0: While some citizens backed the hike, citing the West Asia war and global crude pressure.
2: West Asia जो है उसके अंदर जो लड़ाई चली हुई है उसके कारण ये दाम बढ़ेंगे, और मेरे को जहां तक अंदाजा है ये 12 से 14 रुपए तक के ये जो है ना अप जाएंगे। उसके बाद ब्रेक इवन आएगा तभी जो है कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इसी कारण दाम बढ़ाना काफी जरूरी भी है।
0: Many others felt that the government had to do more over rising inflation and shrinking household budgets.
3: 15 दिन के अंदर तीन बार पैसे बढ़ाने ये कोई सही बात थोड़ी है, और सरकार को इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली जिएगी कैसे, समझ ही नहीं आ रहा।
0: The reason behind the hikes, a global oil supply crunch, a war in West Asia, energy vessels struck near the Strait of Hormuz, rising refinery costs and currency fluctuations making imports more expensive. The opposition continues to target Prime Minister Modi, calling him the inflation man, accusing the government of looting the public.
4: Where is Mr. Modi? Why is he not speaking about it? For every little thing, he has a comment to make. When it comes to important subjects like economy, he keeps quiet. When it comes to price rise, he keeps quiet. He does pariksha pa charcha but doesn't talk about NEET. पेपर लीक
5: नौकरियां हैं नहीं, जिनकी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, मगर सरकार मेलोडी बांट रही है।
0: But government sources have hit back, claiming that India shielded consumers for 76 days despite soaring global crude prices and massive supply disruptions.
6: अर्थव्यवस्था के गिरते हुए दौर से परेशानी में है, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को संभालने की सफल कोशिशें की हैं।
0: द गवर्नमेंट ब्लेम्स ग्लोबल फैक्टर्स, द ऑपोजिशन ब्लेम्स पॉलिसी फेलियर, बट कॉट इन द मिडल इज द आम आदमी। फ्यूल इज गेटिंग कॉस्टलियर एंड सो इज एवरीडे लाइफ। हाउ मच मोर कैन द कॉमन मैन अब्सॉर्ब before the pressure becomes unbearable. With Amit Bhadwaj in Delhi, Bureau Report, India Today.
7: A horrific crime in Tamil Nadu has triggered massive outrage and fresh questions over women and child safety in the state. A 10-year-old girl who went missing while playing near her home in Coimbatore Sulur area was later found assaulted and murdered near Kannampalayam. Police has arrested two suspects in connection with this case, the brutal incident that sparked protests, with angry locals demanding immediate justice and strict punishment for the accused. The National Commission for Women has also taken suo motu cognizance of the case. Chief Minister Vijay has condemned the killing, calling it inhuman and unforgivable, and has promised a swift investigation and strict action. But the opposition has launched a sharp attack on the Vijay government. AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy alleged administrative failure and negligence over law and order in Tamil Nadu.
8: இல்ல பாப்பா காணாங்க, தர்ஷினி யார், தர்ஷினி பாப்பா காணாங்க,
9: பயம் எல்லாம் பேசுங்க.
8: நாங்களும் வந்து போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம், போலீஸ் காவல்துறையும் வந்து பொழுது நீ தேடினாங்க, ரெண்டு நாள் தேடினாங்க.
10: அதான் கொஞ்சம்
8: இப்பதான் எஃப்ஐஆர் போட்டு எஃப்ஐஆர்ல கைது சொல்றாங்க. இப்படி குழந்தை காலம் ஆயிடுச்சு, அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குற்றவாளி காட்டுங்கன்னா காட்ட மாட்டோம், அது நாங்கள் கொண்டு போகிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு தீவிரமாக தீர்ப்பு எடுக்கணும், முடிவு எடுக்கணும். குற்றவாளி எங்ககிட்ட காட்டிட்டு தான் கொண்டு போகணும், காட்டலைன்னா விட மாட்டேங்க, பாப்பால கையில் வாங்க
11: மாட்டேங்க.
8: இது இது வரைக்கும் ரீசன் கரெக்டான ரீசனே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க.
12: During the course of investigation, analysis of the CCTV cameras, footages in the nearby vicinity, and the technical evidence confirmed that one Karthi, aged about 33 years, had taken the missing child along with him. He was arrested, and during the course of interrogation, the accused Karthi confessed that he had lured the child, sexually assaulted her, and subsequently murdered her in a coconut grove near Kannampalayam, Kulam. Further investigation.

0: India is in the grip of a brutal heat wave. From Delhi to Vidarbh, Uttar Pradesh to Andhra Pradesh, temperatures are crossing dangerous levels. With the Met Department warning, the extreme heat will continue for days. Heat wave to severe heat wave conditions are expected across large parts of North, Central and Eastern India. Delhi, Rajasthan, UP, MP, Haryana, Punjab, Telangana and Odisha remain on alert. In Vidarbh, Brahmapuri recorded a scorching 47.2 degrees. And in a staggering statistic, all 50 of the world's hottest cities this morning were in India. Cities across UP, Odisha and Madhya Pradesh crossed 44 to 45 degrees even before noon. Hospitals are now reporting rising cases of dehydration, exhaustion and heat stroke, especially among children, the elderly and outdoor workers. And India Today's Delhi ground reality check exposed the real intensity of the heat. Using a thermal camera in Nandanagri, surface temperatures under direct sunlight crossed 65 degrees Celsius.
1: दिल्ली की नंद नगरी में पहुंची है और जहां हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक तो आपको दिखाएंगे कैमरे के जरिए क्या आप देखते हैं और दूसरी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि थर्मल कैमरे के जरिए कि कितनी गर्मी है। ये थर्मल कैमरा आपको वो दिखाएगा कि इस समय दिल्ली में तपिश क्या है, अलग अलग जो सरफेस हैं वहां तपिश के क्या हालात हैं। तो सर, जो आपका थर्मल कैमरा इस समय, मैं ये रोड देख सकता हूं, इसका कितना तापमान दिखा रहा है?
2: जो इस टाइम इसका सरफेस टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 62 दिखा रहा है, 63 दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें।
0: रोड्स, व्हीकल्स एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वर रेडिएटिंग एक्सट्रीम हीट, व्हाइल टेम्परेचर्स ड्रॉप्ड शार्पली अंडर ट्री कवर, हाइलाइटिंग द क्रिटिकल रोल ग्रीन स्पेसेस प्ले इन कूलिंग सिटीज।